एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

0: स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है घर।

0: कपड़ा और मकान मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी और कपड़े की उचित व्यवस्था होने के बाद हमें जरूरत होती है एक मकान की, जिसमें परिवार के सभी सदस्य सहजता से रह सकें। देखा जाए तो चार दीवारें और उस पर एक छत के ढांचे को हम मकान कहते हैं, लेकिन ईंट, गारे, पत्थर से बने इस मकान को घर बनाने में कुछ अन्य बातें भी महत्व रखती है। परिवार के सभी लोग जहां हिलमिल कर रहे उसे हम घर की संज्ञा दे सकते हैं। वास्तव में हर एक घर में आपसी प्रेम, भाईचारा, बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह प्राप्त होता है। उस घर में खुशियां सदा खिलखिलाती रहती है। आज भी कितने ही लोगों को बेघर रहना पड़ रहा है। कुछ लोग जीवन भर की मेहनत के बाद भी अपने घर होने का सपना पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जिन लोगों को रहने के लिए घर या आवास उपलब्ध है तो इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर हमें चलना चाहिए। घर के सभी सदस्यों में आपसी सद्भाव और प्रेम बने रहना आवश्यक है। आजकल एकल परिवार के घर हैं, लेकिन कई लोग अभी संयुक्त परिवार में बहुत ही उल्लास से रहते हैं। उनके सुख दुख में घर परिवार का बड़ा सहारा होता है। घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन उनमें मनभेद कभी नहीं होता। ऐसे परिवार और घर आदर्श माने जाते हैं। घर बनाने में धन के साथ साथ हमारी मेहनत और भावनाएं भी जुड़ी होती है। यही भावनात्मक रिश्ता हमें संस्कारित करते हुए श्रेष्ठ पारिवारिक दायित्वों का एहसास कराता है। इसलिए अपने मकान को घर बनाने में परिवार का योगदान और संस्कार महत्वपूर्ण है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: समूह स्वर में इस देशगान के साथ ही वंदना का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए अब सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन।
1: अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

अभी आप रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वैणीदास और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे तारिश दवे से गजल गायन।

प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45। प्रातः 9:10 और प्रातः 11:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

प्रातः 7:30, प्रातः 9:30 और दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे किसान श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम

शाम 5 बजकर 30 मिनट और रात्रि में 9 बजे आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का। और रात्रि में 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती नी बात।
1: कार्यक्रम हमारा सब किसान भाई इन बोने धर्मिष्ठानो राम राम राम राम। देखो भाई इन बोने सब खेती बाड़ी नु काम काज करवाम लगे था कहा, क्योंकि अपने जे भी खरीफ नी फसल

तो नमो कबीर कुरुपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय साल। सर्वर तरवर संत जन सोतावर से मेष, परमारथ के कारणे।

0: आए ना जानू किस भेस में हरि आप आए मिल जाए। इसलिए कहते हैं या मानव का भाग्य उदय होता है तो उन घर संत मेहमान होते हैं और संतों के द्वारा के लिए परमात्मा भी आप पहुंचते हैं। सदगुरु कवि साहब लिखते हैं, हे
1: धन जारो भाई जागो संत आए पामणा, धन जारो भाई जागो संत आए पामणा।

0: आज मारो गायक जागो साहेब आया बाबू।
1: कहते हैं
0: हा सब संतो को शीश नमाऊ सतगुरु राव दामना।

ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਗੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਪਾਮ।

कहते हैं भाग्य जा सुन मेहमान होते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने संतों के द्वारा गुरु के द्वारा आनंद मेहमान बदावा गाते हैं। और संत आने में क्या समय बनता है, कहते हैं भक्ति द्रावण उपजी तो लाए रामानंद, प्रगट करी गुरु कबीर ने तो सात दीप नौ खंड। भक्ति भगत भगवत गुरु, भक्ति जो करता है कि गुरु को भगवान समझता हो, शत्रु नाम पद एक ताके पद वंदन किए तो नाचे विदन अनेक दिनों का नाश गुरु विदना से होता है। इसे लिखते हैं ओ भगति दान गुरु मोहे दीजियो, धर्मदल जी कहते हैं गुरु

धर्म दादी ने भक्ति को दान मांगा। आज के रूप में हम धन दौलत माया पुत्र परिवार राजपाट अच्छे बंगले और कार हो ये मांगना कर लेते हैं। कहते हैं

0: आदिवासी लोक संगीत में अभी आप वैणीदास और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: आज के टाइम हम धन दौलत माया पुत्र परिवार की मांग करते हैं और भक्ति हमेशा निराशा है। श्री गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मुरी ममता मरी तो मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुहि तो के गे सत कबीर। आशा तो सतनाम की और आस विनाश, और आस सब मार सीध जूती तर की बाज, ऐसी भक्ति।

प्रकार लिखते हैं। अरे जो माया पर बस नहीं होता, अनूप जंगल क्यों जाता। संसार में माया का प्रसन्न होता तो अनूप लोग जंगल नहीं पहुंचते।

ऐसी भक्ति में आता है जो सारे मुख्य पदार्थ थोड़े सकल किया। आगे लिखते हैं, जग में वैरी कोहे नहीं जो मन शीतल होए, ये आपा सब डाल दो तो दया करे सबको। साहेब कबीर के मन शीतल भया जैसे निर्मल नीर, आगे पीछे हरी फिरे तो केवे कबीर कबीर।

अब यहाँ से असद नहीं की ना तुम तो अब हम यहाँ बाकी।

0: लिखते हैं, हम ना ज्ञानी है, शत्रु भी ना है और मूर्ख भी ना है, ना पंडित ना पोती है।
1: हाँ ना हम सर्ग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे।
0: हमें ये भी आशा ना है स्वर्ग में पहुंच जाएंगे।
1: हाँ ना हम सर्ग

0: अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत वैणीदास और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: जो सारे मुझे पदार्थ थोड़े सफल किया आगे लिखते हैं। जग में वेरी कोहे नहीं जो मन शीतल हो, ये आपा सब डाल दो तो दया करे सबको। साहेब कबीर के मन शीतल भया जैसे निर्मल नीर, आगे पीछे हरी फिरे तो केवे कबीर कबीर।

0: लिखते हैं, हम ना ज्ञानी है, शत्रु भी ना है और मूर्ख भी ना है, ना पंडित ना पोथी है।
1: ना हम सरज लोक को जाते, ना हम नरज सिधारे,
0: हमें ये भी आशा ना है स्वर्ग में पहुंच जाएंगे।
1: हाँ ना हम सरज लोक

ये मन सारे हम ब्राह्मण खत्री वेश्या शूद्र हैं, यहाँ मन सारे हम हिंदू मुस्लिम हैं, हम ईसाई पारसी हैं, ये सारी बातें मन की।

ये पक्षपाती, ये मजहब के आडंबर, ये हमारे मन के विस्तार है। सदगुरु कबीर साहब लिखते हैं, हाँ नहीं मैं मद है नहीं ब्रह्मा हो हरि हजरत कुछ।

अभियान आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत नैनीदास और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे तारेश दवे से गजल।

प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। पहली रचना मेरी वर्तमान हालात से काफी इत्तेफाक रखती है। जैसा कि हम जानते हैं, रंजिशों और साजिशों का दौर है और अपनी ऊंचाइयों पर है। ऐसे में मेरे अल्फाज कुछ यूं निकलते हैं, बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे, रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। दिल में जो है रूबरू कहो, बात मेरे बाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह दुखाओगे ये दिल, तरकीबें इजाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया, कल की बात थी गुजर गई, आज फिर से याद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। अंतिम शेर इस गजल का सुनिएगा, कि करके हमसे बेसबब गिला, सच कहो कि तुमको क्या मिला, करके हमसे बेसबब गिला, सच कहो कि तुमको क्या मिला, दर्द मेरा देख कर यूं तुम, अपने दिल को शाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, बेवजह फसाद ना करो ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। इसी क्रम में एक अपनी गीत गजल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। छोटी सी भूमिका इस गजल की रख दूं कि दो हम सफर जब साथ चले हैं, एक की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हैं, एक पीछे रह जाता है। कई बार जो पीछे रह जाता है वो अपने दिल को अपने मन को किस तरह से समझाता है, किस तरह से खुद को सांत्वना देता है, मैंने उन्हीं भावों को शब्द देने का प्रयास किया है, सुनिएगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने

मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने

जमी पर मैं अपने कदम देख लूंगा। चुराने पड़ेंगे तुम्हें रंग तितली से, बागों से कलियां चुरानी पड़ेंगी, तुम्हें प्रेम के गीत रचने की खातिर खजानों से खुशियां चुरानी पड़ेंगी।

मैं बाकी बचे सारे गम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। ये मखमल के गद्दे, ये रेशम की चादर, तो फिर चुभ रहे हैं ये बिस्तर तुम्हें क्यों? तुम्हें छत हवेली की हासिल है, फिर भी सताता है तूफान का डर तुम्हें क्यों?

0: अपनी कश्ती का दम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है, है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। सू का अर्थ है कोना, दिशा। तुम्हारी चमक पर फिदा हर नजर है, है रोशन तुम्ही से ये महफिल की हर सू। तुम्हें मान बैठी है हीरा ये दुनिया, मैं गुमनाम हूं बन के जंगल का जुगनू। रहेगी उजालों की दरकार तुमको, रहेगी उजालों की दरकार तुमको, मैं रातों के घनघोर तम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। अंतिम पंक्तियां इस गजल की कुछ यूं हैं। पता है सफलता के अपने सफर में, तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। पता है सफलता के अपने सफर में, तुम्हें मुझसे आगे निकलना ही होगा। लगन लग गई कामयाबी की तुमको, लिहाजा तुम्हें तो बदलना ही होगा। नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल, नजर में रखो तुम महज अपनी मंजिल। मैं टूटी हुई हर कसम देख लूंगा, तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा। बड़े ख्वाब तुम अपनी आंखों में रख लो, मैं अपने लिए थोड़ा कम देख लूंगा। तुम अपनी उड़ानों की ऊंचाई देखो, जमीन पर मैं अपने कदम देख लूंगा।
1: अभी आप वातायन के अंतर्गत तारिश दवे से गजल सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गाना रविंद्र जैन का लिखा और उन्हीं का स्वरबद्ध किया हुआ था। फिल्म का नाम था क्योंकि झरोखों से।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब

0: ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी,
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म का नाम था हीरा लाल पन्ना लाल, मजरू सुल्तानपुरी के बोलते संगीत आर डी बर्मन का था। इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा आपदा प्रबंधन

0: और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विम्बल्डन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा

0: दूसरी बात सही हो। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी क्यों है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है, और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, कि स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीओपीएस का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, एनजीटी सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ देर से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो पर्वतों को दृढ़ता दी, नदियों को प्रवाह दिया, आकाश को विस्तार दिया और अग्नि को तेज दिया। लेकिन जब बात मनुष्य की आई तो उसने इन सभी गुणों को एक ही अस्तित्व में समेट दिया। वह कभी नदी की तरह बहती है, कभी धरती की तरह सब कुछ सह लेती है, कभी दीपक बनकर स्वयं जलती है ताकि दूसरों का जीवन रोशन हो सके, तो कभी वट वृक्ष बनकर पूरे परिवार को अपनी छाया में सुरक्षित रखती है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है, सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक संपूर्ण सृष्टि है जिसका नाम है स्त्री।

दोस्तों, ईश्वर यदि कलाकार है तो स्त्री उसकी सबसे सुंदर कृति है, क्योंकि उसने सिर्फ शरीर नहीं बनाया, उसने उसमें संवेदनाएं रखी, करुणा रखी, धैर्य रखा, प्रेम रखा और सबसे बढ़कर सृजन की क्षमता रखी। दोस्तों, जब भी सृष्टि की कल्पना की जाती है वहां एक सृजनकर्ता की आवश्यकता होती है। प्रकृति स्वयं सृजन करती है और उसी प्रकृति का सबसे सुंदर स्वरूप है स्त्री। वह सिर्फ एक जीवन को जन्म नहीं देती बल्कि संस्कारों, विचारों और भविष्य का भी निर्माण करती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री को सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं बल्कि शक्ति कहा गया है। माता पार्वती के बिना शिव भी शिव नहीं बल्कि शव कहे जाते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है कि शक्ति के बिना अस्तित्व अधूरा है। जिस घर में स्त्री मुस्कुराती है वहां सिर्फ हंसी नहीं गूंजती, वहां आशाएं जन्म लेती है। उसके स्पर्श में स्नेह है, उसके धैर्य में शक्ति है और उसके विश्वास में आने वाले कल की नींव है। स्त्री सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीना भी सिखाती है। वह बच्चे के पहले शब्द से लेकर उसके पहले संस्कार तक हर कदम पर भविष्य करती है। इसीलिए अगर सृष्टि को ईश्वर की सबसे सुंदर कविता कहा जाए तो उस कविता का सबसे मधुर शब्द निसंदेह स्त्री ही है।

बस तो एक जीवन और कितने रूप। बचपन में वही बेटी बनकर घर की मुस्कान होती है, बहन बनकर हर सुख दुख की साथी बनती है, पत्नी बनकर किसी अनजान परिवार को अपना लेती है, माँ बनकर अपने हिस्से की खुशियां भी संतान के नाम कर देती है, और जब आवश्यकता होती है तो वही गुरु बनकर जीवन की सबसे बड़ी सीख दे जाती है। रामायण में माता सीता त्याग और धैर्य के प्रतीक है, तो महाभारत में द्रौपदी आत्मसम्मान की आवाज बनकर सामने आती है। यशोदा माँ का वात्सल्य, गार्गी का ज्ञान, अहिल्याबाई होलकर का नेतृत्व और रानी लक्ष्मीबाई का साहस, ये सभी रूप बताते हैं कि स्त्री को किसी एक पहचान में बांधना संभव नहीं। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन स्त्री हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह किसी एक रिश्ते में नहीं रहती, बल्कि हर रिश्ते को अपनी संवेदनाओं से जीवंत बना देती है। यह सब इसलिए नहीं कि उससे कोई अपेक्षा करता है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम स्वयं उसे ऐसा करने की प्रेरणा देता है। यह भी उतना ही सत्य है कि त्याग तभी सुंदर है जब उसका सम्मान किया जाए। जहां त्याग को अधिकार समझ लिया जाए, वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। इसलिए स्त्री के त्याग की प्रशंसा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से होनी चाहिए।

दोस्तों, भारत का इतिहास उन महान स्त्रियों के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता जिन्होंने अपने साहस, ज्ञान और त्याग से युगों को दिशा दी। माता सीता ने धैर्य का अर्थ सिखाया, गार्गी और मैत्रेयी ने ज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ और कई मिसालें कायम की जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। इन सभी महिलाओं की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन एक बात समान थी

कि उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं अपनी पहचान बनाई। आज जब हम इन महान स्त्रियों को याद करते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ते बल्कि जीवन का मार्ग भी सीखते हैं। वे हमें बताती है कि स्त्री की वास्तविक शक्ति उसकी बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसके चरित्र, साहस, विवेक और संस्कारों में होती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनके नाम सम्मान के साथ लिए जाते हैं। समय बदलता है, समाज बदलता है और उसके साथ बदलती है जिम्मेदारियां। आज की स्त्री सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वह शिक्षिका भी है, वैज्ञानिक भी, सैनिक भी तो चिकित्सक भी, न्यायाधीश भी और अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली एक यात्री भी। लेकिन इन सबके बीच वह अपने संस्कारों और रिश्तों की गरिमा को भी उतनी ही सहजता से निभाती है। आधुनिक होने का मतलब यह नहीं कि अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। सच्ची आधुनिकता वही है जहां प्रगति के साथ संस्कार भी जुड़े रहें। एक और वह अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती है, एक और तो दूसरी ओर परिवार के सुख दुख में भी समान भागीदार बनती है। वह यह सिद्ध करती है कि आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज समाज को ऐसी ही सोच की आवश्यकता है जहां स्त्री को उसकी क्षमता से पहचाना जाए, सिर्फ उसकी भूमिका से नहीं। क्योंकि जब स्त्री आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है।

दोस्तों, किसी स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसके गहने नहीं, उसका आत्मसम्मान होता है। रामायण में माता सीता ने वनवास स्वीकार किया, कठिनाइयां स्वीकार की, लेकिन जब स्वाभिमान पर प्रश्न आया तब उन्होंने धरती माता की गोद में समा जाना स्वीकार किया। महाभारत में द्रौपदी ने उनका अपमान सहन नहीं किया, बल्कि उसी क्षण पूरे समाज के पतन की शुरुआत हो गई। इतिहास हमें सिखाता है कि जहां स्त्री का सम्मान सुरक्षित रहता है वहां सभ्यताएं फलती फूलती हैं, और जहां उसका अपमान होता है वहां वैभव भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए स्त्री का सम्मान करना कोई उपकार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे चरित्र की पहचान है। हमारे शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर वचन कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां किए गए सभी शुभ कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। सम्मान का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि उनके विचारों को सुनना, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना और उन्हें समान अधिकार देना है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ दिल से यहीं समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप कुछ दिल से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं

राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे मिश्रित स्वरों में गाए राजस्थानी गीत। सबसे पहले सुनते हैं अलका याग्निक और साथियों का गाया ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत मिश्रित स्वरों में गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत जय श्री शिवराम की आवाज में।

जय श्री शिवराम के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM एंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने

0: सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। ये केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, ये हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोर लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
2: शिलान्यास लोकार्पण का और आम सभा का प्रोग्राम इसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए क्या पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं, इसी प्रकार के बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के सभी काम निर्धारित समय सीमा से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में हुई परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजा संबंधी कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकार को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम प्रगति पर हैं। नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि विभिन्न फीडर, नहरों, पंप हाउस, चंबल एक्वाडक्ट और अन्य घटक पर कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में आज से सभी जिलों में 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि अभियान की थीम जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने सही और खुशहाल पर जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
3: अभियान के तहत आशा सहयोगियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर योग्य दंपति सर्वे किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों पर खुली चर्चा होगी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिक गर्भ निरोधक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। सुखी परिवार और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आशा सहयोगियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा आम जन को जागरूक किया जाएगा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन

0: आवेदन करने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण ट्राई के बीच दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के 5,68,000 से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क का ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे का काम 1,40,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। डाक सेवक अपने नियमित डाक वितरण गतिविधियों के दौरान ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और नेटवर्क संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कमियों की पहचान की जाएगी और नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सर्वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। केवल अधिकृत प्रगणक ही ओबीसी परिवारों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी दर्ज कर रहे हैं। आयोग के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक विकल्प आम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकृत प्रगणकों के लिए वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था है। आयोग ने आमजन से सर्वे को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक बूंदी दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा। एमपैक्स श्रेणी में नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पहला, बूंदी जिले की भिया ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दूसरा और घाट का बराना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एमपैक्स मिलकर काम करें ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज, प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें।

0: अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? शोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: रेखा,
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई आए।

0: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों, थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
1: टुंटू नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
0: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: पर मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: असर दिखा रही थी, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: माया। दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।
2: चांद मेरे

0: 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

संगीत थमा, तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। आओ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी, आपसे क्या छिपा है? आंखों के बिना

अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहाँ से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सपोर्ट बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर

उनकी सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वो वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ न कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।
1: अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन की गाई गजलें।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरन की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 11:32 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं हाईवे फिल्म का गीत।

0: गजनी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान की आवाज में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से
1: जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान यह बात कही। गृहमंत्री

0: कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देवबर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: में निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार, रहमान का संगीत।

1947 अर्थेस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर

मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए उसमें, कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं। दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन है, तनाव है, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है, हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नजरअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस

सन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि यहाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब? तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

पुरी के संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है। जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। जरा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए, उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है, चुप न बैठकर हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। वही आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानिया, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं, और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूं तो न मनाती हूं न मनुहार करवाती हूं। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, न मैं मनाऊंगी न तुम, मतलब मैं न मैं रूठू न तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है, गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफर सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आँखें खोलता है तो सभी की आँखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियाँ ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आँखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो।

देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट,

0: और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
0: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक

0: जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की यह बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट हुई है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानव श्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।

0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल है तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, रचना थी साहिल लुधियानवी के, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना। संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मंच है गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था। गज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी।

डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पीठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाह, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुक्त हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, ये मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूँ मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मुमल महिंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड, लेकिन इतिहास का

0: अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हमने पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: Hello. Hello. Hello.
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना?
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने तवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं लेनी उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहाँ था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास।

0: बीवी के कड़े बेचने गया था, लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ।
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा,
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहाँ एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह
0: बाबा।
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
0: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
1: अल्लाह हाफिज।

0: बड़े कमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगनियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजायाफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।

0: प्रदेश सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोनी पिटवा रखी है।
1: आप वजह फरमाते
0: क्या तुम वही रहीम खां हो?
1: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
2: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
1: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
2: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
1: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
2: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
1: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
0: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
1: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और इन गोरों को यहाँ से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहाँ आया हूँ।
0: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
1: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
1: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है दीवान जी।
3: हुक्म।
2: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
3: जो हुक्म अंदाता।
2: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
1: कनी कनी खम्मान दाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: की एक्सप्रेस में भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस में भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.

0: आइए आइए, वेलकम मिस्टर हर्षन, फरमाइए क्या खिदमत की जाए।
1: एज यू नो योर हाइनेस, हम इधर ऑन ड्यूटी आया, हमारा मिशन है ऑपरेशन सर्च। इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
0: बड़े शौक से मिस्टर हर्षन, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल से बताएं तो बेहतर हो।
1: ओह यस योर हाइनेस, सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंजर, वो भगोड़ा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
0: जरूर मिस्टर हर्षन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
2: राम सिंह,
3: हुकुम अंदाता।
0: हर्षन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: Hey, hey, I say, hey, I say.

0: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
1: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
0: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहाँ मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: 瑞文，把你，感谢特别。
1: Matiko Karima, Malka.
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई। सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई। तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।

0: कौन सा अस्पताल?
1: जैसलमेर लिए जाता हूँ।
0: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
1: मेरी बात मानो रही भाई। चलो मेरे साथ।
0: अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की

0: जो अब तक रास रहा है उसे रास ही रहने दे करीमा।
1: मेरी बात मानो रहीम भाई, चलो मेरे साथ।
0: अब ये ठाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
1: ऐसा मत बोलो रहीम भाई, ऐसा मत बोलो।
0: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूँ। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना। पानी

0: तमन्ना दिल में रह जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह,
1: या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है सही माँ, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विवेक भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूं और आप लोगों से रूबरू हूं।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और न्यू कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना।
2: जी,
3: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था। और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला

0: और संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
1: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: जी।

0: सीमा जी निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ये जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं।

0: अपने अपने फील्ड में
1: जी।
0: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
1: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
0: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ, वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
1: जी जी।
0: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
1: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन
0: जी,
1: हमेशा।
0: जी जी।
1: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
0: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी।
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं
0: बैठ। हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति, कि इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है, कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
1: जी, जी।
0: और वही पुरी साहब में था।
1: जी, जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर, मतलब संवाद बोलता था उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं। मैं वो किरदार को देख रही थी, मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लेवल के कलाकार उनकी, मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो सकता।

0: बिल्कुल, आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूं तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनाऊं? ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है।
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: गली। वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी, उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक चार लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली।
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के

0: सीख लिया तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
1: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
0: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
1: जी
0: गाने से
1: जी,
0: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं और एड,
1: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
0: महानदी।
1: महानदी,
0: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी। मेरी पसंद का गीत है।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होगी, लीलाबाई होंगी तो वो है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहां माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है, माँ की गोद ही ऐसी

0: जगह है जहां आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे। वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे, न चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहां गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांगे तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए हंसी में बता रही, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है, है ना? आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जिसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है। जीना जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
0: जी।
1: फिर धीरे धीरे जैसे ही आते गए आता

0: ताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूं मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूं कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं मजबूर कर दिया जाता है उनको या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी न किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ न कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुखरी कार्यक्रम, कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम और उनका समय।

कुछ ही देर में आप सुनेंगे राजस्थानी गीत सीमा मिश्रा बद्री व्यास और साथियों की आवाज में। कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार सात में जिले की चिट्ठी। आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 6:30 पर।

राजस्थानी में समाचार 6:45 पर, जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम 5:30 पर रात्रि 9:00 भी आप सुन सकते हैं।

रामचरित मानस गान 6:30 पर, खेती नी बात 6:45 पर, 6:50 पर लोक भजन। वातायन का समय रहेगा 7:20 पर। कार्यक्रम कुछ दिल से 8:15 पर। सुगम संगीत 9:10 पर ठीक 11 भी आप सुन सकते हैं। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर।

प्रातः 8 बजे दिल्ली केंद्र से, हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जीप्रिच में केंद्र से 9 बजे। इसके साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न किया।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। ये जी सुनिए राजस्थानी गीत सीमा मिश्रा, बद्र व्यास और साथियों की आवाज में।

मिश्रा बद्री व्यास की गाय राजस्थानी गीत ही संपन्न किए गए हैं। 5:30 हो चुके, ये जी सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

पुराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम की शुरुआत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों से। फिल्म का नाम है वास्तव। गीतकार हैं समीर और संगीत जतिन ललित का।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था वास्तव। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म लव स्टोरी का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के, गीत के बोल आनंद बख्शी के लिखे हुए और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म तेरी कसम से लिया है। इसे आवाज अमित कुमार ने दी है, शब्दकार आनंद बख्शी है और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं फिल्म यस बॉस का दो गाना। गाने वाले कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचारों के बाद। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम सन्यासी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम था सन्यासी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जिंदा दिल।

जिनका नाम है एक जान है हम, युगल स्वर शब्बीर कुमार और आशा भोसले के, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं अनु मलिक।

ಮನೆ ಮಂದಿ.

दिन है यार।

में है ये हौसला।

0: आशा भोसले और शबी कुमार को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था एक जान है हम।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन राहुल देव बर्मन की है।

फिल्म पड़ोसन के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी वासवड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। शाम के 6:30 होने को है। आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर वार्ता की। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना यानी 35,000 करोड़ रुपये करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए, इनमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र शामिल हैं।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का समय कोलैप का समय है और इसके लिए किसी देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना अहम है।
1: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नसीराबाद केकड़ी देवली फोर लेन सड़क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है।
2: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों जान गंवाने वाली 5 प्रसूताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। जन सहयोग से इकट्ठा की गई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उधर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्रभावित ऑपरेशन थिएटर की जांच की जा रही है और इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
3: तो चारों प्रकरण हैं। कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से MTP करवा के आए थे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए

0: प्रकरण सेप्सिस की कंडीशन में था, दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था, और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन थी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि तबादलों के दौरान ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन रखा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि DEO, प्रिंसिपल और लेक्चरर सहित हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, हालांकि तृतीय श्रेणी के सामान्य स्थानांतरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1ली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। प्रदेश में कल से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक 2-2 पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से मां और बच्चे के कल्याण के लिए 2 संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं जनसंख्या स्थायित्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा को वर्चुअल रूप से यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौर ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
2: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग लेते हैं, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखी है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
1: डीग जिले में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश मान ने बताया कि खरीफ सीजन में खाद और बीज की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व और समाज हित से जुड़े विषयों पर विभिन्न सत्रों में मंथन किया जा रहा है। पाली जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन और राजकोप सिटीजन ऐप की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न

होने पर सजग रहें और पुलिस को सूचित करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्प्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले महीने की सबसे प्रमुख घटना पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होना रही। राज्य सरकार की पहल पर कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच सहमति बनने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया तथा गंभीरी नदी और नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा। बाद में तकनीकी कारणों से जल प्रवाह कम रहने पर किसानों ने फिर से आंदोलन किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी पूरे महीने जिले भर में चर्चा में रहा। अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, श्रमदान, पौधरोपण, फार्म पॉन्ड निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने जिले का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। वहीं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म पॉन्ड का भूमि पूजन कर किसानों से जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी पूरे माह आकर्षण का केंद्र रहे। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र लोगों को पट्टे दिए गए और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला मुख्यालय के शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। राज्य सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसका अवलोकन जनप्रतिनिधियों और आमजन ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1555 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मदर लैब शुरू की गई है, जहां 148 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत घर घर जाकर ORS और जिंक

0: की गोलियां बांटी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोगों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में न्यायालय ने दो आरोपितों को 7-7 वर्ष की कठोर कारावास अर्थदंड दिया। जिले में बीते माह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई। ईद उल अजहा का पर्व जिले भर में श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन चैन तथा भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं अधिक मास के चलते जिले के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। निर्जला एकादशी पर भी कई धार्मिक आयोजन हुए। करौली की अरुणा शर्मा ने श्री अन्न पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाई है और जिले भर में अपनी नई पहचान बनाई है। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और मोटे अनाज के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुनो कर 35,000 करोड़ रुपए रा लेवल ताई ले जावनो तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हल्का माए विकास रा 1,258 करोड़ रुपए रा काम शुरू कीना और पूरा भिया काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला मत है खास ध्यान, गांवई हलकान स्कूलों में शिक्षकों की कमी नी आवण दी जावेला। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर में राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखीजियो। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य मत है जोर। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन सागे दोनों देशों बीच सहयोग मजबूत करने रे बारा माय चर्चा कीनी। ई पाछे जारी करी जा भेड़ा बयान माय दोनों नेता रणनीतिक भागीदारी बढ़ावन रो स्वागत कीनो। वह कहो कर रिकॉर्ड समय माय करी जो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौतो दोनों देशों सारू नुआ मौका बनावेला। ई करार साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दोनों कैरर करीब 35,000 करोड़ रुपए रा लेवल ताई ले जावन माई मदद मिलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री न्यूजीलैंड यात्रा रे दौरान रक्षा कारोबार टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सरीखा न्यारा न्यारा हलका माए दोनों देशों बीच 18 करार मत सही करी जी।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड में बसियोड़ा भारत रा लोगा नहीं संबोधित कीना। वह कहो के मौजूदा दौर एक दूजा सागे मिलर काम करन रो है और इन सारू किणी देश री आबादी नहीं बल्कि जनता रा भलारी भावना खास है।
2: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: इमोके न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री लक्सन दुनिया में भारत रा बढ़ता रुतबा प्रधानमंत्री मोदी री अगुवाई और न्यूजीलैंड रा विकास में वठ बसियोड़ा भारत रा लोगों रा योगदान री सराहना कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अजमेर जिला रा केकड़ी हलका में विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामारी शुरुआत

0: ਯਕੀਨੀ ਅਰ ਪੂਰਾ ਫਿਆਕਾਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਸੀਰਾਬਾਦ ਕੇਕੜੀ ਦੇਵਲੀ ਫੋਰ ਲੇਨ ਸੜਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੀਨ ਦੌਰ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਲਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਰਾਖੀ ਜਿਹਾ ਜਲਸਾ ਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਫੇਸ 2 ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਸਬੇ ਜਿਨਮੇ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸਮੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਕਾਮ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਿਤਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਨੇ ਬਣਾਏ। ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ।
0: कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लारला दिना जापारे दौरान जहां 5 महिलाओं की मौत वेगी ही वाला परिवार वाला ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला माली मदद री रकम रा चेक सौंपिया। आ परिवार ने संबल देवन सारू जनता री मदद सहयोग राशि भेड़ी कर संबंधित परिवार ने 5-5 लाख रूपये री मदद दे री जी। इबीचे भीलवाड़ा और बांसवाड़ा रा सरकारी अस्पताल माए ऑपरेशन जापो करावन पाछे लाडला दिना कुछ लुगाइयां री मौत रा मामला माए अस्पताल प्रशासन किनी लापरवाही इनकार कीनो है। भीलवाड़ा माए महात्मा गांधी अस्पताल रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़ बतायो के शंका वाला ऑपरेशन थिएटर री जांच करी जा रही है और जापारी भगत इस्तेमाल करी जा इंजेक्शन रा नमूना ही जांच सारू भेजी जा है। वह जापारे दौरान गंभीर हालत माए रेफर भैर आवन ने मौत रो कारण बतायो। बांसवाड़ा रा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव बतायो कि शुरुआती जांच माए किड़ी भांत रा संक्रमण रेठा नी पड़ी है। वह बतायो कि मामला री आला दर्जा री जांच सारू जयपुर रा 5 डॉक्टर री टीम बनाई जी है।
2: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेज है उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन थी।
0: प्रदेश में उद्यमिता ने बधाओ देवन सारो चलाई जा रही रिको प्रत्यक्ष आवंटन योजना रो 12वां दौर 15 जुलाई ने शुरू हुआ। इना तेज 100 बत्ता औद्योगिक हलका माए 5,000 बत्ता औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स प्लॉट निवेशक सारू मुहैया कराया जा वेला। रिकोरा प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला बतायो की इन दौर री ई लॉटरी 31 जुलाई ने निकाली जा वेला। वे बतायो कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना रा तहत हाल ताई रा 11 दौर माए 1,844 प्लॉट रो आवंटन कर जा चुको है। आरे जरिए राज्य माए 18,000 करोड़ रुपये बत्तो निवेश कर जा सकेला और 37,000 बत्ता नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत इस समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि तबादला के दौरान गांवाई और शहरी हलकान स्कूलों में शिक्षकों और संतुलन बनाई चियो है ताकि गांवारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी नहीं हो। अलवर में खबर नवीसा सागर बातचीत करता था कि दिलावर कहो कि शिक्षा विभाग में तबादला रो काम पूरा हो गयो है। ध्यान जोग है कि DEO प्रिंसिपल और लेक्चरर समेत न्यारा न्यारा ओहदा माथे काम कर रहे हजारा शिक्षकों का तबादला करी जिया। हालांकि 3rd ग्रेड अध्यापकों का तबादला ई प्रक्रिया में शामिल नहीं है। राजधानी जयपुर में सगला कोचिंग संस्थानों ने 31 जुलाई ताई आसान निकास नीति अपनावन का हुक्म दिया जिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि कोचिंग सेंटर रा भवन आसानी निकलवा रा सुबिता और हिफाजत सा गई सगला संस्थाना ने साफ नीति बनावनी फैला

जेना तेत कोर्स छोड़बारी सूरत में विद्यार्थियों ने फीस पाछी मिल सकेला। इस आगे मानसिक तनाव रो सामो करण सारू लगातार काउंसलिंग ने ही जरूरी करी ची है। प्रदेश री सरकारी स्कूलों री नवी बारहवीं कक्षा ताई दाखिला सारू अर्जी देवन री आखिरी तारीख 25 जुलाई कर दी रिची है। माध्यमिक शिक्षा विभाग रा निदेशक सीताराम जाट

0: करता बतायो कि ई परीक्षा रे जरिए 9651 ओहदा माथे भर्ती करी जावेला। परीक्षा सारू राज्य रा 27 जिला माए सेंटर बनाई चिया है। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज आखा राज्य में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करी चिया। आरे जरिए मायडा और बच्चा रा भला सारू दो बच्चा बीच जरूरी आंतरो रखन और परिवार नियोजन माथे जोर दियो जा रियो है। 18 जुलाई तक चलन वाला जनसंख्या स्थायित्व जन जागरूकता सप्ताह रा तहत स्वस्थ परिवार और खुशहाल परिवार सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। ई मौके जयपुर माए राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए जनसंख्या स्थायित्व रा मामला माए बेहतरीन काम करन सारू बांसवाड़ा जिला रो वर्चुअल तरीका मान पानो देर मान करी जियो। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे सचिव गायत्री राठौड़ आस वाली लुगाइया ने टेम सर जांच करावन री अरज कीनी।
1: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग लेते हैं, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखी है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो ये काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहें।
0: डीग जिला में कृषि पर्यवेक्षका ने टीम खाद बीज बेचने वाला ने दुकान ने जांच कर रही है। कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक सुरेश मान बतायो कि खरीफ सीजन में खाद बीज री बढ़ती मांग बीच काला बाजारी माथे अंकश लगावन सारू जांच करी जा रही है। सिरोही जिला माए आबू राज रा ब्रह्म कुमारी संस्थान माए आज राजनीतिक सम्मेलन शुरू भयो। 3 दिन रा ई सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र माए गोवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहो कि आध्यात्म इंसान रा सार्वजनिक जीवन में सही दिशा देवे है। वह जनता रा नुमाइंदा हो सेवा नैतिकता और सकारात्मक सोच सागे विकास माए योगदान देवन री अरज कीनी। पाली जिला में पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट री ओरू नेरी नेरी ठोणा महिलाओं री हिफाजत और मां नु जुड़िया कार्यक्रम रखी चिया। इस दौरान खुद री हिफाजत रा तरीका रो दर्शाव करी चियो और राज कॉप सिटीजन ऐप रे बारा माए जानकारी दी री ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। आप ई सारू सुझाव मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 24 जुलाई ताई भेज सको हो। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुनो कर 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जावन तय करी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हलका माए विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू की ना और पूरा फया काम जनता ने सौंपया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखी जियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं, आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान भाइयों देखो सौरव पूरो बजे तक हो ने किसान भाई ने हवे एम कही सक के चिंता नी लकीर चालू थई रही है क्योंकि एना निगाह ज आकाश अड़ी रही रही है ने हवे आ इंद्र देवता केम मेहरबान नहीं थई रहा बीजा जे दूर दूर अपने सांभी जहाँ के क्या ठकने बाढ़ आ गई आ स्थिति थी रही है अपना अँ कोरो थी रू हवा काढ़ी रो ने देखो बारिश की जो खेती है ये एक प्रकार जुओ कहवा है हालांकि पानी तो हजी आएगा पर किसान भाई ने धैर्यता राखवी जरूरी है आशावादी रहू पड़ेगा। बीजी बात है कि किसान भाई जो पहले ही बुआई कर ली थी भाई इन्होंने फसल भी उगी गई है देखो अवड़े इन्होंने हमें निराई गुड़ाई ने खरपतवार नियंत्रण नो काम हमें आ जो तो है तो किसान भाइयों ई भी अपने समय ऊपर करव पड़ेगा खरपतवार नियंत्रण करीने पछी आपणे खातर नाखंगा तो आपणी फसल ने बिल्कुल पूर्ण रूप थकी फायदो थई शके जेम के मक्खीनी फसल है तो एना में भी निराई गुड़ाई आपणे करवी जरूरी है। किसान भाइयों मक्कानी जे फसल है एना में निराई गुड़ाई नो मुख्य उद्देश्य आपणे खरपतवार निकाळवो ने पौधनी जड़ने मजबूत करवो कहवाये है। खरपतवार नियंत्रण में पैदावार में 30-60% तक की वृद्धि भी थाय है। आना खास पहलू ऊपर आवीने आपणे किसान भाई ने निराई गुड़ाना सही समय ने सही तरीका नी बात करो तो प्रथम निराई जे है जेने आपणे पहली वक्त निराई करवी है ई बुआई थकी 15-20 दाड़ा बाद आपने प्रथम निराई करवी पड़ेगा ने आना समय में किसान भाइयों जे भी फसल में खेतर में अवांछित खरपतवार हैं इन्हें आपने निकाली देवत हुए इन्हें अलावा किसान भाइयों बीजी निराई जिन्हें आपने बीजी भाषा में मिट्टी सड़ाबो भी कहे हैं आज बीजी निराई है बुआई थकी 40-45 दाड़ा में आपने करवो जुए आ समय पौधनी जड़ों ऊपर मिट्टी सड़ाबी जुए ताकि तेज हवा थकी पौधा ने कई प्रकार नुकसान भी नहीं थाय पौधो पड़े भी ने पौधो सही सलामत जिंदा रहे एटले आपने एनी जे जड़े हैं एना ऊपर मिट्टी सड़ावीने पौधाने मजबूत करवानो काम भी आपणे करवो पड़ेगा। किसान भाईओ देखो मशीनोनो उपयोग आपणे करी रह्या तो लाइनो में जे बुआई करी थकी मक्का है एनी निराई हारू व्हीलवाळी मशीन जे साइकल आपणे करी रह्या एनो उपयोग भी आपणे करवो जोईए। देखो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण बदले रासायनिक उपाय भी अपनावे हैं तो एना भैया ने कहा कि यदि अति आवश्यक हो तो आ रासायनिक खरपतवार नियंत्रण आपने करव जुए ई भी कई बेरा बुआईना तुरंत बाद खरपतवार रोकवा हारू बुआईना 48 घंटाना भीतर आपने एट्राजीन नो छिड़काव करी देवो जुए आ बुआई ने 48 घंटाना दरमियान या एने भीतर आपने एट्राजीन नो छिड़काव करवो जुए। मक्का में खरपतवार हारू खड़ी फसल में 3-4 पत्तियोनी अवस्था में थावा ऊपर आपने टापरा मेजोन नो उपयोग करवो जुए या करी शको। मक्का नी फसल में किसान भाईओ मुख्य रूप थकी लागवा वाला कीड़ा जेम के इल्ली या तना छेतक थकी बचाव हारू आपने किसान भाईये ने फसल में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% 5G 100 ग्राम प्रति एकड़ नो छिड़काव हमेशा हवार या हाजना समय में आपने करवो जुए। किसान भाईयो मक्का नी फसल में कीड़ा ने इल्ली विशेष करीने आपणे एम कही शकीए के फाल आर्मी वर्मा

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रधान।
1: सब भाइयों ने सोरा डियोवाल जी बहनों राम राम।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
1: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
2: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
2: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
2: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान भाइयों देखो कितलो बढ़िया भजन सांभ्यो। भजन नो मुख्य उद्देश्य अगर आपणे पकड्यो होगा तो निश्चित आपणे अगाड़ी अब्बावारी जे पीढ़ी है, आपणे तो हस पण अगाड़ी अब्बावारी जे पीढ़ी है एना पीढ़ी ने भी फायदो थई शके के भाया गांव गांव में कीजो रे, पानी ने बांधो रे, आ पानी जे ऊपर वालो है। देखो सरकार भी काम करी रही है ने अवड़े विभाग भी पूरु महकमो काम करी रह्यो के ऊपर नो जे पानी है, समासा नो जे पानी है, छत ऊपर जे पड़ी रू

0: ई बताड़ो के निराई गुड़ाई थी कि हो फायदा है।
1: देखो निराई गुड़ाई थी कि इतने फसल नीचे खरपतवार रहे बना कम सारू रहे थे
0: जी,
1: ये सब साफ थे जा पहली बार। बीसो महीने पौधे ने जो जड़ा में विकास थवा जुए, नमी रेवी जुए, पोषक तत्व रेवी जुए
0: जी,
1: ये सब रहेगा तो मतलब फसल नो विकास अच्छा था का।
0: अच्छा,
1: साफ सफाई निराई गुड़ाई टाइम बाय टाइम टू करी करी तो ये पोषक तत्व मलवे जुवी की फसल ने मलेगा
0: बराबर।
1: अगर तमे सारू साफ नहीं करू बना काम नो खरपतवार ने साफ नहीं करी तो फसल फसल बगड़ी जाएगा, कमजोर थी जाएगा।
0: हाँ, एक पौधों ने विकास में ने जड़ों में भी आ फायदो थी सके ने?
1: बिल्कुल थी सके, बिल्कुल जी। जे अपने अपने खाद पानी जे है थी अगर पौधो ईस लेगा खरपतवार नहीं होगा तीस लेगा,
0: बिल्कुल
1: खरपतवार होगा तो बस ईस सब सोखी लेगा तो फसल ने नुकसान था पूरा।
0: गजराज जी एक आप बताओ कि आना निराई गुड़ाई थी कि मिट्टी में काय फर्क पड़े के?
1: बिल्कुल निराई गुड़ाई थी कि मिट्टी में बिल्कुल फर्क पड़े। देखो मिट्टी ऊपर ने से थागा
0: जी
1: ते एनो होए हवा नो पानी नो सब नो संतुलन बनेलो रहेगा।
0: अच्छा अच्छा,
1: नी ऐसे भूरी भूरी मिट्टी बनेगा बिल्कुल ते इन पौधों नो विकास तेजी ते की थागा।
0: एक आ नमी नो संरक्षण करवा बल्ले किसान भाई हर प्रकार ना प्रयास करे है तो आने निराई गुड़ाई थी कि अपने आ फायदो खरो के नमी नो संरक्षण करी छे आपने?
1: बिल्कुल, नमी नो संरक्षण करवा हारू। देखो एक तो सूखी परिस्थिति है, बार बार निराई गुड़ाई थागा मिट्टी नी ऊपर सतह ऊपर ने सब तोड़ी नाखंगा अपने सतह ऊपर नी तरह तो इन तो कहूंगा मिट्टी ने अंदर से नमी है वाष्पीकरण थागा
0: जी जी
1: तो इन्हें थकी हुए मिट्टी खूब मतलब अच्छी थी जाएगा, सूखी सूखी थी जाएगा, नमी युक्त थी जाएगा, कम्प्लीट रहेगा ते फसल ने फायदा था गायन थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आ तो देखो तुम्हें बहुत बढ़िया जानकारी आ सौरव पर आली रहो। पर गजराज सिंह जी एक ई बताड़ो कि आप हमेशा तापमान में गिरावट थी करे, कई बड़ा उतार चढ़ाव था तो इन्हें थे कि भी आनो का संबंध खरो के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो जड़ों में अच्छा विकास करवो है
0: जी
1: तो पौधे ही भूमि थे कि मजबूत पकड़ रखेगा, स्वस्थ उभर रहेगा। अगर मिट्टी में इतनी मजबूत पकड़ रहेगा, जड़े अच्छे पकड़ी रखेगा
0: जी
1: पौधो आडो नहीं पड़ेगा, हवा सा लेगा कैसा लेगा इतने ये करूँ जरूरी है। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो कुल मलावी ना निचोड़ हूँ कही
1: फसल निराई गुड़ाई बहुत जरूरी
0: केम करे
1: एनो कारण है पानी धूप एने से पोषक तत्व मलब जुए स्थान है मुख्य फसल जो जे भी होते हैं इन्होंने बड़ा बहारू इन अच्छी फसल पैदा करवारू आ सब चीजें जरूरी निराई गुड़ाई बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल, देखो गजराज जी ने किसान भाई ने आज मान लो आदेश करे के कोई मशीन आवे के एवं कई?
1: देखो एना हारू हमने तो सप्तकी पावर वीडर करने मशीन निकलू है
0: जी,
1: मिनी टीलर भी कहे ने। हाँ, पेट्रोल ने बैटरी भी थे की साल है।
0: अच्छा,
1: ये खरपतवार निकालने काम करे, ये मिट्टी ने भूर भूरी कर लो सप्तकी अच्छी करवाने काम करे। नानो बगीचा है, छोटा छोटा स्थान है, ब्रश कटर नो भी उपयोग थी रहा छोटू मशीन से लाइट की भी अपने डीजल पेट्रोल डीजल थी साले
0: जी, जी।
1: चार्जिंग वर्ते भी साली सके एवं मशीन ने निकली है आजकल आधुनिक तकनीक आ गई खेती में।
0: बिल्कुल बिल्कुल गजराज सिंह जी, आप देखो सौरा ऊपर आने आटली बढ़िया जानकारी तो आई जाओ पर राते राते देख किसान भाई है अपना ये आप फसल ने निराई गुड़ाई करी ने इन्हें हर प्रकार ना काम करी ने जतन करी ने अपनी फसल पैदा करे हैं तो एने बाद आप जाते जाते अपने किसान भाई ने एक एवो सुझाव आलो के जेने कि किसान भाई अपनी फसल अच्छी उपज पैदा करी सके।
1: देखो मैं तो किसान भाई ने इस कही चाहिए रहा हूँ कि अपनी मेहनत में तो भरोसा रखो एक तो प्रकृति है, प्रकृति तक अपने कहीं नहीं सकता पर अपनी मेहनत में तो पूरा भरोसा रखो जो उन्नत किस्म न बीज उपयोग करो, उन्नत किस्म न मशीन उपयोग करो ताकि अच्छी फसल मल नहीं सके।
0: गजराज सिंह जी आप थोड़ा ऊपर आई बने आपने आटली बढ़िया जानकारी आली एना बल्ले आपने खूब खूब धन्यवाद। राम राम साहब।

0: बांध लो।
1: आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
2: किसान भाइयों, देखो चौहान साहब ने कितनी बढ़िया जानकारी आ लिया निराई गुड़ाई ने बारा में, ने वे आ कार्यक्रम नो टाइम भी पूरो थई रह्यो, पण एना पहला किसान भाइयों ने कहा कि देखो फसल पैदावार बढ़ावा बदले कुछ एवं तंत्र है, एना तंत्र ने आपने याद करव पड़ेगा, जिम के प्रमाणित बीज लावनी बुवाई करवी है, उन्नत कृषि यंत्र नो प्रयोग करवो है, कृषि कार्यक्रमों में आपने भागीदारी निभावी है, खाद बीज दवा खरीदते समय आपने बिल लेव जरूरी है, इने अलावा नगदी ने उद्यानिकी फसलों ने अपना भी पड़ेगा, मिट्टी की जांच करावी ने उर्वरक जो है ई काम में लेवा पड़ेगा। आने थकी किसान भाईओ घना तरह ना फायदा है, एक तो आप धोखाधड़ी थकी बची सक, गुणवत्ता सुनिश्चित थी सके, नवीनतम जानकारी आपने मिली सके, अगर मीटिंग अमेजन बेई ने अपने जानकारी लता जोखिम थकी बची सक, अगर आपणे कृषि यंत्रनो नवीन कृषि यंत्रनो प्रयोग करंगा तो समय श्रम ने पैसा भी बसावी शका। एक आ नगदी ने उद्यानिकी फसलनो अगर आपणे चयन करा तो निरंतर आपणे आमदनी भी मिली शके, हर हमेशा आपणे जेब में पैसा रही शके। तो किसान भाईओ, आवाजे उत्पादक वृद्धिना या उत्पादकता वृद्धिना जे कुछ मूल मंत्र हैं, एना मूल मंत्र ने आपने घाटे करवा पड़ेगा तो किसान भाई ने फायदो थी सके। आना नवीन तकनीक ना युग में आपने खेती भी जो है ये नवीन तकनीक ने माध्यम थकी आपने करवी पड़ेगा। देखो हम कार्यक्रम नो टाइम धीरे धीरे पूरा थी रो है, तो आज तो वालजी भाई ने आज्ञा आलो, काले सोरा उपर नवी जानकारी नाते आपने मलंगा। ए आवजू, राम राम, राम राम, राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आपने वालजी भाई से किसानवाणी कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफको राजस्थान।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजों

0: कार्य करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना घना राम राम सा। अरमा का वहां श्रोतावा ने भी मारा घना घना राम राम, जो दूर दराज गांव ठाणी में बैठा खेतार घर में काम करता, साथ ही चौपाल में बातें करता भी कार्यक्रम में सुन रहे थे। तो श्रोतावा, आज का कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप यह करेला कि थोड़ी सी अगर आप जागरूकता रखा और थोड़ी सी जानकारी रखा तो कम मेहनत में भी खेतीबाड़ी और पशुपालन में बत्तो फायदो ले सका जा। कई काश्तकार भाया तो ई बात में अपनावे भी छे। खेबा को मतलब यह छे कि यह सब चीजा ने वे सुने भी छे और साथ में गुणे भी छे, जाने मैं अब आपसे करवाड़ी छू। सबसे पहली बात तो यह कि आपने उत्पादकता बढ़ावा के ताई, उत्पादकता बढ़ावा का जो छोटा छोटा मूल मंत्र छे वाने समय के साथ अपनावा तो आपने जो खेती बाड़ी छे उन्हें चोखू उत्पादन ले सका जा। इसी साथ साथ ही मेहनत भी कम लागेली और लागत भी कम लागेली और आपको जो फायदो छे वो बत्तो हो जावे लो। अब करनो काई छे, कई काश्त कमाए तो करे भी छे, पर जो कौन करे आज सिर्फ वहां के लिए। सबसे पहली बात तो यह कि अब जो टाइम छे वो आवाड़ो छे बिजाई करवा को, उनके लिए आपने जरूरी छे कि आप पहली सुई आपने जी की रूपरेखा छे जो ब्लू प्रिंट छे वो तैयार कर लेना कि आपने कौन सी फसल लेनी छे, उनको जो उत्तम बीज छे वो आपने कोड़े से मिले लो, किस्मा उत्तम कसी कसी छे, साथ ही साथ आपना हल्का का यानी आपका क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी उत्पादकता दे सके छे कम मेहनत और कम लागत में, कौन सी ऐसी फसल छे जो कि आपके क्षेत्र के हिसाब से रोग प्रतिरोधी छे, उन्हें अगर आप आपका खेत में बीजेला तो आपको उत्पादन चोको हो गए लो। दूसरी बात एक यह भी ध्यान रखा कि खेत की पूर्व तैयारी यानी खेत की तैयारी आपने पहले से ही कर लेनी चाहिए, जो कि इतना टाइम से मैं आपने कहता भी आ रहा था और आप कर भी लिया होला। गर्मी की गहरी जुताई, मिट्टी पानी की जांच, यह सबको खासो महत्व हुए छे आपका खेत की उपज में बढ़ावा में और लागत में कम करवा में। गर्मी की गहरी जुताई करवा से खेत की जो माटी छे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जावे छे जिससे उत्पादन चोखो हो गए छे। इसके साथ साथ ही आपने शुरुआत में ही जब आप बिजाई करो तो बीजा को बीजोपचार जरूर शुरू कर लेनी चाहिए, जिससे कि जब फसल खेता में आप बो और जब वह बड़ी हुए तो उन्हें कोई भी प्रकार के जो कीड़ों और बीमारी लाग जावे छे, जिससे कि काश्तकार भाइयों ने खासो नुकसान उठानो पड़े छे, उन नुकसान से बचू जा सके। इसके साथ साथ ही देखो सरकार बीमा योजना भी चलावे छे, फसल बीमा योजना वो भी आपने करवा लेना चाहिए ताकि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल में कोई नुकसान हुए छे तो उनकी भरपाई सरकार मुआवजा द्वारा कर सके और आपके नुकसान की भरपाई हो सके, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति छे वह मजबूत रहे, उन पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके साथ साथ ही देखो सिंचाई को जो साधन छे वो आपका खेत में की तरह को छे, आपकी फसल में कितो पानी चाहिए, इसकी भी पहली से ही आपने सतुनो बिठा लेनी चाहिए, या कोनो वे कि आप फसल तो असी बो दिया जिन्हें पानी की जरूरत छे और पानी को साधन आपका खेत में इतो छे कौन है जितनी जरूरत छे, आप सिर्फ इंद्र देवता के भरोसे ही छा और इंद्र देवता तो मान लो बरसात हुई तो हुई, न हुई तो न हुई, असमंजस की स्थिति और उनका मायने फिर आपकी जो फसल छे वह जल जावे छे या ज्यादा बरसात हो गए तो फसल गल जावे छे, दोनों ही तरीका से आपने नुकसान उठानो पड़े छे। इतनी सिंचाई का जो संसाधन छे वे आपके खेत में कितना छे और आपकी फसल में कितो पानी चाहिए इसकी व्यवस्था भी आपने देखनी चाहिए। इसके साथ साथ ही जरूरी छे कि आप अच्छी किस्म को चुनाव करो, बीजोपचार कर ही लो, सिंचाई की पूरी व्यवस्था रखो, कीटनाशकों को छिड़काव भुड़काव जरूरत के मुजब ही करो, या कोने बत्तो डाल दिया तो भी नुकसान छे, कम तो डाल दिया तो भी नुकसान छे। इतनी पूरी जानकारी रखो। जो फसल आप ले रहे हो उमें कृषि विशेष

0: जिसो आप सलाह ले फेर ही काम करो कि आपने कौन सी फसल के लिए कौन सो बीज उपचार चाहिए जे कौन सी फसल के लिए आगे चार काई काई आपने कीटनाशी रसायनों की जरूरत पड़ेगी और सारी सावचेती अपनाता हुए ही सुरक्षित रहता हुए ही आपने कीटनाशी रसायनों को भी उपयोग करनी चाहिए। खैबा को मतलब यही है कि बाता तो छोटी छोटी छे पर घनी मोटी छे जाना अगर ध्यान में रखा और अपनावा खेती बाड़ी के मायने तो चोखो फायदो ले सका जा और उत्पादन में भी बढ़ा सका जा। एक ही साथ साथ ही देखो वे काम भी जरूर करा जो आपके खेत की जमीन की उत्पादकता बढ़ावे छे या कोने कि सिर्फ और सिर्फ फसल को उत्पादन बढ़ावा में ध्यान देवा आपने खेत की जो माटी छे उनका स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देवा क्योंकि अगर आया करेगा तो एक बार तो आपको उत्पादन चोखो हो जावे लो पर लंबा समय के लिए आपने आर्थिक नुकसान यो हो गए लो कि आपका खेत की जो जमीन है वह बंजर होती जावेली उर्वरा शक्ति कम होती जावेली जिससे उत्पादन पर सीधो सीधो प्रभाव पड़े लो। अरसा बाता चीता के साथ ही देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ावे भी ला तो गीत संगीत भी सुनेला।
1: किसान साथियों कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: और गीत सुनता सुनता ही देखो विषय विशेषज्ञ आ गए छे, तो आओ सा सगला ही मिलर ई जानकारी को लाभ लेगा।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज भारत स्वागत है डॉक्टर पदमचंद जैन जी। आप पूर्व प्रोफेसर अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जोबनेर सुहा पधार्या। डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सा।
2: आपको बहुत बहुत किसान भाइयों राम राम सा। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का मुझे मौका मिला।
1: जी सर, आज आप जानकारी ले वाला कीटनाशी रसायन का अवशेष और स्वास्थ्य पे वहाँ को किन भात को दुष्प्रभाव पड़े है, आप किन भांति वहाँ की जद में आ रहा है, वो सारी बात आप विस्तार से जाना ला डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रश्न मारो यही रहे कि कीटनाशी रसायन छह काई।
2: वास्तव में किसी भी कृषि के या कोई भी जब फसल उगाते हैं तो उसके कीटों के बचाव के लिए कुछ रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और वो ही रसायन कीटनाशी रसायन कहलाते हैं।
1: जी,
2: ये सभी रसायन जो कीटों को नियंत्रण भी करते हैं और मारने के भी काम आते हैं। कीट फसलों पर भी लगते हैं, गोदामों में भी लगते हैं, घरों में भी लगते हैं, अस्पतालों में भी लगते हैं, इवन मुर्गियों पर भी पशुओं पर भी जो लगते हैं, इनकी रोकथाम के लिए कीटनाशी रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन जहरीले होते हैं, अतः कीटों के साथ साथ मनुष्य एवं पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
1: जी, कीटनाशी रसायन होगा कहीं छे और किन भात की आपने नुकसान पुगावे, ये आप सरल शब्द में बताया सागरी।

0: आप ये भी बताओ सा कि कीटनाशी रसायन का जो अवशेष होवे छे वह किन्ने कहवे छे?
1: हम जब कीटनाशी का दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हर दवा का कुछ दिनों तक असर रहता है
0: जी,
1: और वो अगर समय पूर्ण नहीं हो तो उसके अवशेष उसमें बचे रहते हैं, और इसीलिए जब किसान अपनी फसल को या सब्जियों को मार्केट में या बाजार में जब लेके जाता है
0: जी।
1: और वो जो उसके लिए जो समयबद्ध है कि भाई ये दवा इतने समय के लिए, उसके बाद उसमें हार्वेस्टिंग करें, और उसके पहले पहले अगर ले लिया जाता है तो वो उसके अवशेष उसमें बचे रहते हैं, और उन रसायनों का छिड़काव करने पर ये कीड़ों को मारने के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी नुकसान करते हैं। भूमि है, जल है, दूध है एवं अन्य पदार्थों को दूषित करते हैं। इसके अलावा जो भी लाभदायक कीट एवं जीवाणु होते हैं ये सब पर ही नुकसान करते हैं। फसल के साथ साथ जो लाभदायक कीट है उन पर भी और जीवाणु भी होते हैं, उनको भी नुकसान होते हैं। अतः अवशेष वे कहलाते हैं जो दवाई तापमान एवं वातावरण के संपर्क में आकर कुछ अवधि तक पौधों पर रह जाते हैं, उसे ही अवशेष कहते हैं। विशेष तौर पर जहां पर इन रसायनों का अनुचित एवं अंधाधुंध उपयोग किया जाता है वहां पर कीटनाशियों के अवशेष पौधों पर एवं आसपास के वातावरण में फैल करके जम जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के बारे में बता रहा हूं
0: जी।
1: जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय डीडीटी का उसका खूब उपयोग हुआ था। तो जब डीडीटी का उपयोग हुआ और हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से, तो वो जितने भी सोते थे पानी के और दूसरे, वो उसमें वो दवा डाली गई। अब वो उन्होंने मछलियों ने खाया तो मछलियां मर गई, पशुओं ने पिया तो पशुओं के जब दूध निकला तो दूध में भी वो अवशेष आए, और वो जो दूध बच्चों ने पिया वो उनकी माँ के भी उसमें आया। तो ये एक ऐसी साइकिल है कि ये अवशेष कभी रहने ही नहीं चाहिए, और इसका स्वास्थ्य पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए कई बार कई दवाएं बंद भी हो जाती हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इन अवशेषों को खत्म करने पर ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे कीटनाशी का अवशेष से स्वास्थ्य पर किण भात का दुष्प्रभाव पड़ा चाहिए थे, आप एक उदाहरण से समझाया, आप विस्तार से जानबो चाहवा छे। हमें
1: होता क्या है, हर व्यक्ति चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, वो ये सोचता है कि आज मार्केट में मेरा ये भाव है
0: जी।
1: और इस भाव को मैं इस सब्जी को तोड़ करके मैं मार्केट में ले जाऊं, उस समय ये नहीं सोच रहा वो कि इसमें इस दवा का कितना प्रभाव है, कितना अवशेष बचा हुआ। वो दवा जब कंज्यूमर के पास जाती है, जो ग्राहक खरीदता है, वो कितना नुकसान करता है। तो ये चीजें किसान भाइयों आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसकी प्रतीक्षा अवधि के बाद ही इसको तोड़ें, और इसीलिए जो ना सब्जियों पर दवा छिड़कने के बाद बिना प्रतीक्षा अवधि के किसान उनको बाजार में बेचने के लिए ले आते हैं। वे मनुष्य उन सब्जियों का उपयोग करता है तो वो सीधे उसके पेट में भी भोजन के साथ चले जाते हैं। अगर ये दवाइयां अधिक मात्रा में चली जाती है तो उल्टी होने लगती है, आदमी बेहोश भी हो जाता है, और धीरे धीरे ये मात्रा जब शरीर में पहुंचती है तो कैंसर तक हो जाता है। कई जो रोगी कैंसर के जो रोगी हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड का जो प्रभाव है उससे भी कैंसर हो जाता है। इस प्रकार शरीर के कई अवयवों को पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे लीवर किडनी तक भी खराब हो जाती है। पशुओं के पेट में जब ये रसायन जाते हैं तो ये रसायन दूध में आ जाते हैं, जिससे दूध पीने वाले बच्चे एवं सभी मनुष्यों के पेट में ये रसायन चले जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण देकर बताया था। इस तरह से ये धीरे धीरे एक पूरी साइकिल चलती जाती है, जो और इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी भी जो है ना इसका अवशेष, जो डीडीटी जब हुई थी अब तो बंद हो गई, तो इसका अवशेष हेरिडिटी से बच्चे में हुआ, उसके संतान में भी उसकी हेरिडिटी आ जाती थी। तो ये बहुत उपयोग इसका जो है बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए
0: जी सर।
1: इन दवाइयों के दुरुपयोग से भूमि, जल एवं वातावरण दूषित हो जाता है, जो श्वास से शरीर पर भारी प्रभाव पड़ता है, आंखों में भी इसका प्रभाव पड़ता है, और नेत्र ज्योति भी कम होने लगती है। आसपास के पानी के स्रोत से भी दवा पहुंचती है, और ही नहीं पानी का हर नित्य कार्यक्रम में पीने में उपयोग करते हैं, जिससे घातक बीमारियां हो जाती है
0: जी। सागर ही अगर आप बात करा डॉक्टर साहब, आप बताया

0: कि जो रसायन का मायने उपयोग के लिए भाई कितना दिन पाछे आपने फल और सब्जियां तोड़नी चाहिए उनका पाछे उन्हें बाजार के मायने ले जानी चाहिए। तो आप मोटो मोटे तौर पर ये बताओ सा कि कितना दिन तक मैं रुका और फल सब्जियां मैं इंतजार करा कि आका अवशेष खत्म हो जावे।
1: तो वो कीटनाशी रसायनों के अवशेष अलग अलग समय पर फसलों तक रहते हैं
0: जी,
1: उसका अवशेष खत्म होने के बाद ही हमको सब्जियां एवं फलों का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि प्रतीक्षा अवधि के बाद ही इनको बाजार में लेकर आवें। मनुष्य के शरीर में कुछ रोधक क्षमता होती है, अतः दवा की मात्रा अगर रोधक क्षमता की नीचे आ जाती है तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जैसे कोई भी दवा है उसकी रोधक क्षमता पॉइंटों में 0.00 कुछ लिखी हुई, मान लो 5 है, तो उस समय तक अवधि में अगर इस मात्रा में आ जाती है तो फिर वो मनुष्य के लिए घातक नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर रहती है तो फिर वो घातक रहती है। छिड़काव के बाद सब्जियों में उपयोग लेने की प्रतीक्षा अवधि के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मेलाथियोन है, साइपरमेथ्रिन है, फेनवेलेट है, क्विनॉल फोस है, डाइमेथियोट है, मोनोक्रोटोफोस है, ये तुरई भिंडी में मेलाथियोन 3 दिन के बाद उपयोग ले सकते हैं, प्याज में 6 दिन के बाद ले सकते हैं, टमाटर में 5 दिन पर ले सकते हैं। साइपरमेथ्रिन, ये साइपरमेथ्रिन सिंथेटिक पॉलीथ्राइड्स है, ये क्या 10 गुना इफेक्ट भी देती है, 10 गुना इसका प्रभाव भी है और कम नुकसान भी करती है। भिंडी में 4 दिन, पत्ता गोभी में 6 दिन, फेनोलेट भिंडी में 6 दिन, पत्ता गोभी में 10 दिन। पत्ता गोभी एक ऐसी चीज है कि जो पत्तियां होती हैं तो उसके अंदर ही वो रहती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा अपन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डाइमेथियोट है तुरई में 10 दिन, पत्ता गोभी में 15 दिन और मोनोक्रोटोफॉस है फूल गोभी में 10 दिन और भिंडी में 7 दिन। इस तरह से ही अगर प्रतीक्षा अवधि हम रखें, किसान भाइयों आप ये ध्यान रखें कि भाई मुझे ये दवा मैंने छिड़की है तो इतना कम से कम 6-7 दिन, वरना क्या होता है किसान भाई ये सोचते हैं अरे मेरी भिंडी थोड़ी बड़ी ज्यादा हो जाएगी फिर उसका भाव नहीं मिलेगा और उस चक्कर में जो है पहले ही ले आते हैं, तो ये आप इतना अपने फायदे के साथ साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान कर रहे हो। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सिंथेटिक पॉलीथ्राइड्स, विशेष तौर पर क्या है हमको कम से कम रासायनिक का उपयोग, जैविक उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, पैरासाइट्स का है ताकि ये नुकसान नहीं करें, नीम है, और ये जो मैंने जो सिंथेटिक पायरोथ्राइड्स है अभी मैंने आप उधर साइपरमेथ्रीन है, टेट्राक्लोरोजिन है, पेरिलीन है, परथराइड भूमिका कीटनाशक विभिन्न कीट नियंत्रण उत्पादों में प्रयोग है। अतः मैं किसानों को ये सलाह देता हूं कि दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें एंड दूसरे रसायन जो जैविक हो जैसे नीम सिंथेटिक पायरोथ्राइड्स इत्यादि का इस्तेमाल करने से कीट भी मर जाते हैं एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज और है, मैं ये सबको सलाह देता हूं
0: जी,
1: कोई भी गृहिणी जो है ये ध्यान रखे कि कोई भी सब्जी वो धो करके हल्के से गुनगुने पानी से पहले धो ले ताकि कोई जो अवशेष भी बचे हों वो भी 90% तक वो पानी से निकल जाते हैं और हम सेफ रहते हैं। इसलिए बिना धोए कोई भी गृहिणी इसका इस्तेमाल नहीं करे, ये मेरी सलाह है
0: जी। सर डॉक्टर साहब आप इतना सरल शब्द का मायने है रसायनों का प्रयोग और उनके पाछे ये आपने कितना नुकसान पुकारा है ये सब बातें बताया, लेकिन अशी और कोई बात जो बतानी रहेगी हो वह कर्सा बाहर बढ़ा के लिए और उपभोक्ताओं के लिए दोनों के लिए फायदेमंद हो वह और कोई आप बात बतानी चाहो तो आपको स्वागत है।
1: मैं पुनः किसान भाइयों आपको पुरजोर निवेदन करता हूं, क्योंकि ये कीटनाशक है, ये जहर है, जहर का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे वातावरण को दूषित नहीं हो। हमेशा जब आप खुद भी इस्तेमाल करें तो हैंड ग्लोव लेकर के उसका इस्तेमाल करें और हैंड ग्लोव को फिर तुरंत के तुरंत गर्म पानी से धो दें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें और ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करें जो कम से कम प्रतीक्षा अवधि हो। प्रतीक्षा अवधि के लिए आपको कई किताबों में मिलेंगे।

आपको कृषि विभाग के उससे मिलेंगे, हर दवाइयों की प्रतीक्षा अवधि हमारे जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, मैंने भी पीएचडी इसी में की है, तो वो उसके हिसाब से आप उनका इस्तेमाल करें। मैं अभी भी स्काउट में सेवाएं दे रहा हूं, ये जो बच्चे हैं, युवा जो पीढ़ी है, मैं उनको भी यही बात बताता हूं कि वो इस तरह से इस्तेमाल करें, वातावरण कहीं दूषित नहीं हो।

0: वातावरण कहीं दूषित नहीं हो, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से हमारे करीबन 11,000 स्कूलों में हम जो इको क्लब्स चलाते हैं जिसमें वातावरण शुद्ध हो, और उसमें भी ये चीजें हम आप बताते हैं। और ग्रेनियों से मैं पुनः पुरजोर ये कहना चाहता हूं कि सब्जियों का और फलों का, वैसे ही अपने तो धोखे ही काम में लेते हैं, लेकिन ये अपनी गांठ बांध लें कि हम सब्जियों को बिना गुनगुने पानी धोए बिना उपयोग नहीं करेंगे, ये मेरा संदेश।
1: हमारा जानकारी लिया कीटनाशी रसायन का अवशेष और स्वास्थ्य पर का दुष्प्रभाव, और जानकारी देवा खातिर आया डॉक्टर पदमचंद जैन, आप पूर्व प्रोफेसर अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जोबनेर स्वा पधार्या। डॉक्टर साहब आप कीमती बखत में से बखत निकाल और कार्यक्रम में पधार्या, इनके लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: देखो सा बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर पदमचंद जैन जी आपने दिया, बात यहाँ से कर दी थी आपने अदिति बहन, तो दोनों ने खूब खूब धन्यवाद देना। साथ ही अब स्टूडियो की कड़ी इशारो कर दीजिए कि आज को जी को कार्यक्रम छे खेती बाड़ी को टाइम पूरा होते जा रहे थे, तो श्रोतावा दिराव आज्ञा आशा ने चालान करा, राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इफको राजस्थान।
4: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। गवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौद वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। साथियों, रात के 8 बज रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

अभी आपने सुना देवदास फिल्म का गाना, जिसे गाया था उदित नारायण ने, विनोद राठौड़ ने और श्रेया घोषाल ने। बोल है नुसरत बद्र के और धुन भी है इस्माइल दरबार ने।

अभी आपने सुना हैरत गाना अनजाना अनजानी फिल्म से, जिसे गाया था लकी अली ने। बोल थे विशाल और शेखर के और संगीत भी विशाल और शेखर का।

अभी आपने सुना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म का गाना, जिसे गाया था शंकर महादेवन और एलिसा मेंडोंसा ने। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे न्यूयॉर्क फिल्म का गाना मेरे संग, जिसे गाया था सुनिधि चौहान ने। बोल है संदीप श्रीवास्तव के और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना प्यार के लिए गाना, जिसे गाया था शंकर महादेवन ने। फिल्म है थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, बोल है प्रसून जोशी के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आप सुन रहे थे गाना चन्ना भाई, जिसे गाया था अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल ने। बोल और संगीत थे अखिल सचदेवा के। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैम, उसके बाद समाचार संध्या, फिर न्यूज 8:09, उर्दू में समाचार, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में कैरोलिना मुखोवा और लिंडा अनुस्कोवा आमने सामने, हेनरी पैटन और हैरी हेलियोवारा की जोड़ी ने पूल डबल्स का खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की श्रृंखला का अंतिम टी20 मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी और भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक और पीथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है। और इस मुकाबले के लिए एक तरफ चेकिया की कैरोलिना मुखोवा हैं जबकि दूसरी तरफ लिंडा नोस्कोवा हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी आज इस खिताबी मुकाबले में

0: स्ट्रेंथ करते हुए नजर आएंगे। वहीं अब से कुछ देर पहले पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलो युवारा की जोड़ी ने खिताब पुरुष डबल्स का अपने नाम कर लिया है। उन्होंने आज सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया के मटे पाविक और अल सल्वाडोर के मार्सेले अरिवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता। इससे पहले कल इटली के यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव ने विंबलडन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल की तस्वीर साफ हो गई है, जहां कल इटली के यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव से होगा। कल सेमीफाइनल मुकाबले में ज्वरेव ने ब्रिटेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी के शानदार अभियान पर विराम लगाते हुए उन्हें 7-6, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर लगातार दूसरे विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। डिफेंडिंग चैंपियन और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी 24 साल के सिनर ने 39 साल के जोकोविच को सीधे सेटों में मात देकर एक बार फिर से उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। अब फाइनल में एक तरफ फ्रेंच ओपन जीत कर आ रहे ज्वरेव हैं, जिनके पास अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने का मौका होगा, जबकि दूसरी तरफ सिनर लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। सिनर ने विंबलडन 2025 का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हरा कर जीता था। हार के बावजूद भी 23 वर्षीय आर्थर फेरी चर्चाओं का विषय रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। विश्व रैंकिंग में 114वें स्थान से शुरुआत करने वाले फेरी ने दमीर जुम्हूर, ओटो विर्तानेन, जीजू बर्क्स, ग्रिगोर दिमित्रोव और फ्लावियो कोबोली जैसे खिलाड़ियों को हरा कर अंतिम चार तक का सफर तय किया। वो लाइव रैंकिंग में 78 स्थानों की छलांग लगाते हुए अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 36वें रैंकिंग तक पहुंच गए हैं। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि विंबलडन के इस ऐतिहासिक कोर्ट पर कई खिलाड़ियों ने खिताब जीते और कई खिलाड़ियों ने दर्शकों के दिल जीते। ऐसे ही खिलाड़ी रहे आर्थर फेरी, जिन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। और अब बात करते हैं फुटबॉल विश्व कप की, जहां फीफा विश्व कप में नॉर्वे का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। यह मुकाबला मियामी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से शुरू होगा, जबकि एक अन्य मुकाबले में सुबह 6:30 बजे गत विजेता अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कल स्पेन ने एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
1: 16 वर्षों के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने का स्पेन का इंतजार खत्म हो गया है। स्पेन ने बेल्जियम को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सेमीफाइनल का सफर तय किया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्हें पहली सफलता मैच के 30वें मिनट में मिली, जब लैमिन यामल के शानदार रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस किया। बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ ने पहले डैनी ओल्मो का शॉट रोक लिया, लेकिन रीबाउंड पर फेबियन रुइस ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि बेल्जियम ने स्पेन की बढ़त को बरकरार नहीं रहने दिया और मैच के 41वें मिनट में टिमोथी कोस्टिगेने के शानदार क्रॉस पर चार्ल्स डी केटलेयर ने हेडर की मदद से गोल करते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इस गोल के साथ स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन की लगातार 6 क्लीन शीट का सिलसिला भी टूट गया। मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 86वें मिनट में मैदान पर आए स्पेन के मिकेल मेरिनो ने 2 मिनट बाद ही टीम के लिए विजयी गोल दागा और अंतिम चार में टीम का स्लॉट फिक्स कर दिया। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना पिछले विश्व कप की उप विजेता फ्रांस से होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फीफा भी अब अपने खिताब की दौड़ के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब रुक करते हैं लंदन के लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जी हां, बिल्कुल 140 साल बाद ये मैदान महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच मुकाबला जारी है। खेल के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। भारत ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए थे। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। ऐतिहासिक मुकाबला कहा जा सकता है कई मायनों में। इस समय क्या स्थिति है भारतीय टीम की इस मैच में?
2: निशक्ति भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम पर

0: समय 145 रन की बढ़त के साथ खेल रही है और स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा दोनों ही क्रीज पर डटे हुए हैं। तो अभी तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। अगर भारत की पहली पारी की बात करें तो उनको शुरुआती झटके जरूर लगे थे, जिनमें शेफाली वर्मा और यष्टिका भाटिया के नाम शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप करी स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स ने 64 रन की। उसके बाद हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच 89 रन की साझेदारी हुई और फिर पुछल्ले बल्लेबाजों में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, इन दोनों ने 45 रन जोड़े भारत के लिए और एक मजबूत स्थिति में उनको खड़ा किया। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए थे और इसके अलावा जो जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको कोई भी मौका नहीं दिया। क्रांति गौड़ ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट हॉल लिया और सिर्फ एक ही प्लेयर रही एमी जोन्स, जिन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया इंग्लैंड की तरफ से। कप्तान नेट साइवर ब्रेंट ने 44 रनों का योगदान दिया था। तो इसके चलते इंग्लैंड की टीम जो है वो 170 रन पर सिमट गई थी और भारत को 115 रन की लीड मिली थी।
1: जी बिल्कुल, यानी 115 रन की बढ़त, और जब आप 285 रन बनाकर के इतनी बढ़त हासिल कर लेते हैं तो वाकई आपका मनोबल ऊंचा होता है और कह सकते हैं कि मैच पर भारतीय टीम की पकड़ मजबूत है। वहीं इंग्लैंड में इस समय पुरुषों का टी20 मुकाबला भी खेला जा रहा है, जहां भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में साउथहैम्पटन में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 14वें ओवर में एक विकेट पर 146 रन बना लिए थे। विशेष जिस तरह की ये श्रृंखला गुजरी है भारत के लिए, क्या कहा जा सकता है, टीम श्रृंखला पहले ही गंवा चुकी है और अब सब कुछ आगे देखने के लिए होगा, जो कि एक दिवसीय श्रृंखला भी है।
0: जी बिल्कुल, भारत के लिए ये श्रृंखला जो है किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है। आज हालांकि टीम में दो बड़े बदलाव हमको देखने को मिले हैं कि वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर कर दिया गया है या उनको आराम दिया गया है, उन्होंने 3 मुकाबलों में 42 रन जोड़े थे। वहीं संजू सैमसन वापसी करते नजर आए और सूर्यांश सेडगे को जगह मिली है वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे। भारत पहले से ही 3-0 से श्रृंखला में पीछे चल रहा है। आज सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए मैदान पर उतरी है भारतीय टीम और इसी के चलते उनको वनडे सीरीज के लिए जो अपना मोमेंटम है वो सेट करने के लिए देखेगी। भारत को इस सीरीज के तुरंत बाद 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। पहला मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में, दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेलेगी।
1: जी बिल्कुल, जहां पर टीम की उम्मीद होगी कि जब मैदान पे उतरा जाए तो एक नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा हो और टीम के साथ दर्शकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की वो जोड़ी भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां दूसरे देश की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में कई भारतीय मूल के खिलाड़ियों को स्थान मिला है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, ईश सोडी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है।
1: इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 100 वर्ष पहले भारत की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस दौर में मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था।
2: इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के क्षेत्र में भारत और न्यूजीलैंड के बीच साझेदारी की अपार संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश खेल के क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं। इस दौरान श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत न्यूजीलैंड से रग्बी सीखना चाहता है।
2: भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं।
1: तो एक शानदार टीम है न्यूजीलैंड के पास रग्बी की, जिसका इस विश्व में शायद कोई ही सानी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न्यूजीलैंड में खेलों के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से बेहद प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेल तकनीक में साथ मिलकर काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं।

0: स्पेन के मैड्रिड का, जहां भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम, कृतिका प्रदीप और चिकिता तानपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कृतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: भारत की 17 वर्षीय तीरंदाज कृतिका प्रदीप ने शानदार वापसी करते हुए दुनिया की 11वें नंबर की तीरंदाज हजल बुरून को 145-142 से हराकर मैड्रिड तीरंदाजी विश्व कप में अपने करियर का पहला व्यक्तिगत विश्व कप कांस्य पदक जीता है। उन्होंने इसके साथ ही एक ही दिन में भारत के लिए दो पदक जीतकर यादगार प्रदर्शन किया। कृतिका ने ज्योति सुरेखा वेनम और चिकिता तनिपार्थी के साथ मिलकर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस तरह कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का समापन दो पदकों के साथ किया। कृतिका को सेमीफाइनल में मलेशिया की फातिन नूर फतेहा मत्साले के खिलाफ 142-144 से करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक मुकाबला खेलना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत में कृतिका दबाव में नजर आई। तुर्की की बुरून ने पहले ही दौर में लगातार 3 सटीक 10 लगाकर बढ़त बना ली और कृतिका 28-30 से पीछे हो गई। दूसरे दौर में उन्होंने 29-28 से बढ़त बनाकर अंतर कम किया और तीसरे दौर में तीनों तीरों पर सटीक निशाना लगाते हुए स्कोर 87-87 से बराबर कर दिया। अंतिम तीर पर उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 8 अंक की जरूरत थी, लेकिन कृतिका ने दबाव को मात देते हुए शानदार परफेक्ट 10 लगाया और अपने करियर का पहला विश्व कप कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सुबह खेले गए महिला कंपाउंड टीम फाइनल में ज्योति सुरेखा नम, कृतिका प्रदीप और चिकिता तानिपार्थी की भारतीय टिकड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। कोलंबिया ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखते हुए भारत को 232-228 से हराया, जिससे भारतीय टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब कल रिकर्व वर्ग में भारतीय तीरंदाजों के पास दो और पदक जीतने का मौका होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: सिर्फ तीरंदाजी के निशानों से ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से भी भारत को खुशखबरी मिली है, जहां एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने मोनाको डायमंड लीग में अपने डेब्यू हुई लीग में ऊंची कूद में तीसरा स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। अपने डेब्यू में ये कीर्तिमान रचने वाले सर्वेश पहले खिलाड़ी हैं भारतीय, और इसके साथ साथ वो सैलाइट क्लब में भी आ गए हैं, जहां नीरज चोपड़ा और मुरली शेषंकर तथा विकास गौड़ा जैसे तमाम खिलाड़ी हैं। और अब चलते चलते एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं, जहां T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस समय 15वें ओवर में एक विकेट खोकर के 178 रन बना लिया है। वहीं महिला टीम ने इस समय इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। श्रोता, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे

0: अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: पंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहाँ 8436789315523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण

0: सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारे रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि

संयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुवाई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए

0: दिल्ली हार्ट मिशन हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मन्नाडे और सुमन कल्याणपुर को सुनिए। फिल्म का नाम है सखी रॉबिन, गीतकार योगेश और संगीतकार रॉबिन बनर्जी।

ये आवाजें थी मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम था सखी रॉबिन। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार रोशन और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

फिल्म का नाम था वल्लाह क्या बात है। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी। आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है सन ऑफ इंडिया।

कार्यक्रम में आप सुनिए गुलशन बावरा का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है दत्ताराम ने। युगलस्वर सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम नीली आंखें।

0: बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहेब की और धुन सलील चौधरी की है।
3: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगस्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजी लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा ये?
3: जुदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
3: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
4: वाह।

0: फनकार जिन्होंने अपनी गायकी से सबके दिलों को लुभाया।
1: अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का।
0: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे

0: दोस्तों अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार है गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: जाए।
1: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थी, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
0: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
1: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

0: अदमूल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं, आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं मुकेश के आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत मदन मोहन का। फिल्म है जिंदगी और तूफान।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने एक गीत सुना, अगला गीत भी हम आपको किशोर कुमार की आवाज में सुना रहे हैं। गीत को लिखा है जाहिर ने, धुन दी है सपना चक्रवर्ती ने, फिल्म है जमीर।

दो चोर फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन ने।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: दो रास्ते फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। हसन कलाम ने लिखा है, संगीत रवि का, फिल्म है निकाह।
1: मत कहो।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसुड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला गीत आपको सुना रहे हैं अदालत फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत को नवाजा है कल्याण जी आनंद जी ने।

दो खिलाड़ी फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, संगीत उषा खन्ना का है।

0: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आइए फिल्म संगीत का अंतिम गीत हम सुनेंगे, कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में SH बिहारी ने गीत को लिखा है, संगीत OP नैयर ने।

0: मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज विदाई इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यहीं थमता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय

0: पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम मेन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।